रेडियो नारा पर नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है अर्ज परा। कैसे चल रही है आपकी आज की इवनिंग? मैं यही कह रहा था कि यार फिर भी नेचर की आप टेक केयर करोगे तो नेचर आपकी टेक केयर करेगा। डेफिनेटली नेचर का ख्याल रखना है। एंड जो स्टार्टिंग में न्यूज़ मैंने आपको सुनाई कि AI से रिलेटेड जो डेटा सेंटर्स है वो कड़क कार्रवाई की जाएंगी उन पे, एंड बहुत सारे नियम भी लागू किए हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है, उसके कारण वातावरण का जो असंतुलन है वो कम ज़्यादा हो रहा है। असंतुलन तो बढ़ ही रहा है, संतुलन तो है ही नहीं। सो दैट्स वाई नेचर का अगर आप ख्याल रखते हो, पेड़ लगाते हो, पानी का इस्तेमाल अच्छे से करते हो, तो डेफिनेटली नेचर विल हेल्प यू। एंड आने वाली पीढ़ी को हमें यही सिखाना है कि नेचर का ख्याल रखो, क्योंकि नेचर जो है वो आपका ख्याल रखेगा। अगर नेचर भड़क गया ना तो आपको पता है कैसे होता है। इन्जॉय करते हैं अगला ही गाना।

एंजॉय किया आपने गाना गाना था, वाकई में काफ़ी बेहतरीन है। अब वक्त हो चुका है कि बॉलीवुड की कुछ खबरें जानने का, बॉलीवुड के गलियारों से, माया नगरी मुंबई से। तो मैं ये कह रहा था कि बॉलीवुड हंगामा के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के हिंदी वर्जन को सेंसर बोर्ड ने, दैट इज CBFC ने ए सर्टिफिकेट दिया है। टॉक्सिक के बारे में बात कर रहा हूँ। इस फिल्म की कुल लंबाई 3 घंटे 14 मिनट और 12 सेकंड है। मतलब ये फिल्म पहला ही पार्ट अगर दो पार्ट में आती थी तो अच्छा होता था, ऐसा लग रहा है। बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करवाए हैं जिसमें बच्चों के सामने बोले गए अपशब्दों को म्यूट करना, ड्रग्स से जुड़े दृश्यों को कम करना और कुछ लाइक कन्वर्जेशन है जो ठीक नहीं है उन्हें भी ये कम कर देना, ये कर दिया है। मतलब फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ये चीज़ें तो लग रही थी कि ऐसा कुछ फिल्म है, लाइक बच्चों को लेके क्यों जाना है यार ये फिल्म देखने को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंजॉय करते हैं, अगला गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर।

एंटोक्सिक के बारे में अगर बात करते हैं तो फिल्म की रिलीज को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने 26 अगस्त से 4 सितंबर तक टिकटों की कीमतें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सिंगल स्क्रीन थिएटरों में 50 और मल्टीप्लेक्स में 100 रुपये तक टिकट की कीमतें जो है वो बढ़ सकती है। इसके बदले मेकर्स को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कर्मचारी कल्याण समिति में 1 करोड़ का योगदान देना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। एंड उसके बाद टॉक्सिक का क्रेज़ जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जिस तरह से प्रमोशन चल रहे हैं, यश के इंटरव्यूज चल रहे हैं, सो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि कुछ तो भी नया देखने मिलने वाला है। इट्स लाइक 3 जो अवतार है वो यश के इस मूवी में दिखाए गए हैं, तो ये थोड़ा एक अलग रह सकता है। एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग लेवल का ही है। एंजॉय करते हैं अगला गाना। गाने तो ऑलरेडी सुपरहिट हो चुके हैं, तो टॉक्सिक ना हो बस इसका इंतजार है। एंजॉय करते हैं अगला गाना।

विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, ये विवाद चल रहा है कि यश के एक्ने से ज़्यादा उनकी बियर्ड फेमस है, उनके बियर्ड की वजह से ही वो सुपर डुपर हिट है। लेकिन ये चुनौती को यश ने स्वीकार करते हुए बियर्ड को निकाल डाला है एंड बहुत कम लेंथ की बियर्ड रखी है, एक लुक में आपको नज़र आ रही होगी। तो ऑडियंस का ये कहना है कि विदाउट बियर्ड भी यश काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यश बियर्ड के भरोसे ही लाइक इतना ये कर लेते हैं, लाइक एक्टिंग उनका जो है वो मेन स्किल है, फिर बियर्ड हो या ना हो। वेल, आपको यश का कौन सा अवतार पसंद आया है? एक वो बियर्ड वाला जो नॉर्मल हमेशा उनकी रहती है, उसके बाद बियर्ड ट्रिम करी है वो वाला, एंड थर्ड वन एक ओल्ड लुक में यश नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये कौन सा लुक नज़र आ रहा है, लाइक लोग लुक उनका पसंद आ रहा है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर आवारापन चू सिनेमाघरों में अपने 12वें दिन पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने अपने शानदार वर्ड माउथ पब्लिसिटी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत रखी है। फिल्म का भारतीय नेट कलेक्शन जो है वो 139 करोड़ के पार पहुँच चुका है। वही इसका वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन जो है वो 196.55 करोड़ हो गया है, जो जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। इमरान हाशमी के फैन है यार, इमरान हाशमी के फैन तो ऐसे ही है। हालांकि कल रिलीज हो रही टॉक्सिक के चलते इसकी स्क्रीन शॉट कमाई पर असर पड़ना तय माना जाता है। एंड यू नो कि लाइक आवारापन टू कुछ इतना कमाना था और जितना करना था अच्छा वो ऑलरेडी कर दिया है आवारापन टू ने, लेकिन अब नजर है टॉक्सिक पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्भर नाइट्स एंड बॉलीवुड की गलियारों से चुन चुन के खबरें आपके लिए लेके आता हूँ। एंड अगली खबर है कि अभिनेत्री कृति सैनन एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर बड़े विवादों में घिर गई है। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस विज्ञापन पर तीखा हमला करते हुए इसे जानबूझकर डरावना या अजीब इंटेंशनली क्रीपी बताया है। जी हाँ, सोशल मीडिया यूजर्स कृति सैनन के आधुनिक इंडो वेस्टर्न पहनावे पर जो पारंपरिक त्यौहार के लिहाज में आते हैं वो गलत बता रहे हैं। इसके अलावा विज्ञापन में कृति द्वारा अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधने वाले दृश्य पर भी लोग नाराजगी जता रहे हैं, जबकि कृति का फैंस का कहना है कि पालतू जानवर भी परिवार का हिस्सा होता है। यार, अपनी अपनी राय है, किसी को पेट पसंद आते हैं, किसी को पेट पसंद नहीं आते हैं, तो इसमें तो लाइक विवाद करने जैसा कुछ है नहीं। एंजॉय करते हैं, अगला गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: रिपोर्टिंग फॉर द नाइट्स एंड बातें चल रही है बॉलीवुड की खबरों के बारे में। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ बड़ी घोषणाएं कास्टिंग और अपकमिंग ट्रेलर के बारे में हम बात करेंगे। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म हैवान का आधिकारिक डिजिटल ट्रेलर आज रिलीज होने की खबरें हैं, जिसके लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी अजब सा ही माहौल बना हुआ है एंड फैंस इंतज़ार कर रहे हैं इस ऑफिशियल ट्रेलर का। अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान बहुत सालों के बाद एक साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करने वाले हैं एंड मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के बाद जो है वो पहली बार एक साथ आ रहे हैं। तो यू नो लाइक एक 90s के किड को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि इतने सालों के बाद स्क्रीन पे इनकी केमिस्ट्री देखने लायक रहने वाली है। एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Let's go crazy.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड सलमान खान की मॉन्स्टर में नई एंट्री। सलमान खान और नयनतारा की मुख्य भूमिका वाली आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म मॉन्स्टर से जुड़ी पिंक विला के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में रोनित राय और सीमा विश्वास की एंट्री हुई है। रोनित फिल्म में एक बड़ा पॉजिटिव किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म की शूटिंग वर्तमान में मुंबई में चल रही है और ये ईद 2027 में रिलीज होने वाली है। और बहुत ज़्यादा यू नो लाइक सलमान खान है तो हाइप तो होगी, है ना? तो इट्स लाइक इंतज़ार रहेगा अपडेट क्या आने वाली है मॉन्स्टर मूवी के बारे में। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड 90s के किड सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इनके बिना अजय देवगन, या कितने सारे नाम हैं, इनके बिना तो उनके फिल्मों की कहानियाँ सब अधूरी है एंड इनके बिना तो फिल्में भी अधूरी लगने लगती है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

Absolutely, here again, we are putting one of Nights and the VVAAN ki release date confirmed. Siddharth Malhotra aur Tamanna Bhatia ki suspense thriller film The Udyan ki रीशूट और एडिट की अफवाहों पर विराम लगाते हुए मेकर्स ने घोषणा की है कि ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमा घरों में आने वाली है। एंड ये बाद में बताना चाहूँगा कि ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण नहीं है, ये मात्र एक अफवाह थी। अयान मुखर्जी की आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर चल रही उनकी खबरों को खारिज कर दिया गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि दीपिका पादुकोण इसमें कोई मुख्य भूमिका निभाएंगी। दीपिका ने ये सारे सवालों को ठुकरा दिया है एंड ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो आप ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत, एंजॉय करते हैं अगला गाना। एंड शाम भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो रखी है, तो इस प्यार भरी शाम में ये गाना तो प्ले करना बनता है। बने रहेगा रेडियो धारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारायणपुरी 91 नाइट्स, एंड यही वो वक्त होता है जब सब लोग घर पे आते हैं, अपने लव वंस के साथ बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। खैर, साथ में खाना ये तो अभी आजकल के इस कंपटीशन के युग में थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपके फैमिली के साथ आज भी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो लकी आप सुन रहे हैं रेडियो नारायणपुरी 91 नाइट्स। एंड 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एंड क्या कहूँ मैं यार, इट्स लाइक वीकेंड तो बहुत दूर है, वीकडे चल रहा है, लेकिन यू नो आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि ये वीक बहुत ही लंबा होते जा रहा है? मतलब वीक डेज काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है। एंड फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स ये शो में, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ। खुश रहिए, एंड तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

जिसकी राहों को तकती है नजर, वो कौन है जिसने किया है मुझको खुद से बेखबर, वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR.

सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए सावन के तंग आए जवानी, सावन के

0: सुख भर दिन बीते रे भैया सब सुख पायो रे
1: जीवन में नया लायो रे
0: सुख भर दिन बीते रे भैया सब सुख आयो रे
1: जीवन में नया लायो रे
0: होए होए दुख भर दिन बीते रे भैया।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है।
1: Listening to WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WD

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

سفر ہم راز ہوں تا قیامت تا قیامت جو

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1400

आप सुन रहे हैं रेडियो नाउ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: कदम मेरे कदम,
1: किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा,
2: मगर न जाने एक कदम लगा
0: धूप में खिला है।

0: बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा
1: मगर जाने
0: के धूप में खिला है चांद दिन रात हो गई
1: चांद के बिना तेरे सने ही बात हो गई
0: न बोले तुम न मैंने कुछ

0: एक हो गए हम और तुम,
1: हम
0: तो उड़ गए निंदेरे।
2: रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

हाय एवरीवन, दिस इज मोहित लालवानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे एक बेल आइकन बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ऐसे प्यार करते रहिए।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, एसडी 414 90 एएम, पक्का देसी पक्का.

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: mid on the mic, writing what I feel.
1: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. Tune into Radio Naira 2025 की परफेक्ट शुरुआत.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खड़ा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM।

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. वेल मॉरिसविले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है. इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि रच्चा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून रच्चा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
2: क्या गाना था यार, एक नंबर, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM 99.9 FM SD 44090 AM 99.9 FM SD 34 Telugu नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंग्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to your concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 90 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन्स। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Prayer, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइगा। पता देसी पता लोकल।

0: अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डून सन टॉप। पता है बहुत थकी आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का
1: देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक, वो खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पकड़े। Let's play.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल्स एंड डॉट्स। वेल हमार ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson A. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिस्मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देश में पक्का लोकल।
1: यारी है मशीन से उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल्स एंड डॉट्स।
1: गुलाबी ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Peach Glass of Peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gari, sundariye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka Local.

0: Your talent brought you this far. Your dreams can take you even further.
1: But when immigration questions stand between you and your future, you need more than just information. You need trusted legal guidance and a team that responds.
0: With over 100 years of combined attorney experience, Brown Immigration Law focuses exclusively on immigration law, helping professionals, families, students, entrepreneurs, and businesses navigate the U.S. immigration system.
1: And the best part? Their North Carolina immigration team is located right here in the Raleigh-Durham area, ready to serve our growing community, as well as clients across the country.
0: Need guidance with an H-1B, L-1, employment-based green card, perm process, or business immigration matter?
1: Planning to reunite your family, adjust your status, or become a U.S. citizen?
0: Clear communication, personal attention, and trusted legal advice from Brown Immigration Law.
1: Your future shouldn't have to wait. Call 919-225-3963. That's 919-225-3963.
0: Or visit brown-immigration.com.
1: Brown Immigration Law, local guidance for your immigration journey. Bigger dreams begin with Brown.
2: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 414 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
3: वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD 449 90 AM, 99.9 FM, SD 3 4 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉप. कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी. देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है. ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: ये ऑसम गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में ग्लोविंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है। द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ग्लोविंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन पीटी ऑफ एलिजिबिलिटी।

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में रेडियो नायरा और चेरिस्ट मूवमेंट प्रेजेंट कर रहा है कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा म्यूजिकल सेलिब्रेशन। भक्ति की वाइब, म्यूजिक की एनर्जी और सेलिब्रेशन का धमाकेदार संगम। इस कृष्ण जन्माष्टमी तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जहां होगा डिवोशनल म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइव भजन की डिवाइन फीलिंग, एजे द डीजे के साथ मॉडर्न क्लबिंग बीट, भक्ति में डांस, म्यूजिक में मैडनेस। इंडियन एथनिक ड्रेस में आइए और बनाइए इस शाम को और भी स्पेशल। फूड एंड ड्रिंक्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आइए और मनाइए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भजन क्लबिंग। भक्ति की गहराई, म्यूजिक की एनर्जी और सेलिब्रेशन का परफेक्ट संगम ऑन 5th सितंबर सैटरडे 2026 7 PM टू 11 PM हुकी एंटरटेनमेंट कैरी नॉर्थ कैरोलिना। अर्ली बर्ड टिकट सिर्फ $20 से शुरू और सबसे खास बात पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स विल गो टू द राधा कृष्ण टेम्पल। वन रिदम वन हार्ट एवरीवन इज वेलकम। बहुत मजा आने वाला है इस कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड डॉग। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं on 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Radio Naira सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल, एंजॉय।

You know, Ajay Devgan pulled pranks on sets. In an interview, Ajay Devgan and Rohit Shetty shared a hilarious behind-the-scenes moment from Singham Again when Jay pranked a cameraman. Rohit Shetty recalled a bigger prank where they sent a woman and children to a production team member's house claiming she was his first wife, causing a family dispute. Ajay Devgan joked, "These days, prankers worry about offending someone. Back then, we didn't care. हमारी वजह से एक दो डिवोर्स भी हो चुके हैं." क्लैरिफाइंग नॉट इन्वॉल्व द स्टार्स. मैन, या आई नो, मतलब नाउ अ डेज पीपल आर मोर सेंटिमेंटल. हाँ, ज़्यादा बैक पुलिंग ये सब चीज़ें भी बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन लोगों में इमोशन भी बहुत बढ़ गया है कि यार ये गलत है, ये सही है. दे पॉइंट आउट स्ट्रेट, वो समझते हैं. स्टेडियम फॉर मोर, आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा.

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

यार आफ्टर कोविड सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड. यू नो प्राइस बढ़ गया है, लोग अब कैशलेस हो गए हैं, एवरीबडी यूज़ पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पता है. एक नई जिंदगी में हम एंटर कर गए हैं, वी कैन से लाइक दिस, राइट? दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो व्हाट विद्या बालन नोज फॉर हर रोल्स इन विमेन सेंट्रिक फिल्म्स, ऑब्जर्व्स दैट स्टूडियोज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेल लेड प्रोजेक्ट पोस्ट पेंडेमिक ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. इन अ रीसेंट इंटरव्यू विद डेडलाइन, विद्या ओपन्ड अप अबाउट हर इलस्ट्रेटरियस करियर एंड मेकिंग अ नीश फॉर हरसेल्फ बाय चूजिंग फिल्म्स व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग एंड लेयर्ड फीमेल कैरेक्टर्स. हाउएवर, व्हेन द एक्टर वाज स्टार्टिंग हर एक्टिंग जर्नी, she didn't have the luxury of choice as such characters were simply not being written. There was no question, said Vidya, of strategizing because one had never really seen women take center stage in mainstream films. The few films that I enjoyed where women were leading the story were in art house cinema. The only film I think of which was commercially viable and led by a woman was Chaalbaaz. She said post-pandemic people in India have lost the habit of going to the theaters to watch films. The studios feel it would be safer to bet the historically male-led films. In my opinion, this call for a reinvention in female-led film space. I think I totally agree with her. बहुत सारी आदतें बदल गई हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हम अभी थिएटर जाकर मूवी कम देखते हैं because we have plenty of options to watch things in our screen. It is in a hand all the time. So अब थिएटर जाने के लिए हमें कुछ वैसा अट्रैक्शन चाहिए. And I think women can be that thing. क्योंकि उन्होंने हर वक्त अपने आप को प्रूव किया that they are no less than anyone. Well, stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोक।

हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा. फरहान अख्तर से जीले जरा डिलेज मेड हिम डाउट हिमसेल्फ. कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ना होने से शायद हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, बट आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा, एंड फरहान अख्तर ओपन से अबाउट द इमोशनल एंड प्रोफेशनल टोल ऑफ जीले जराज कॉन्स्टेंट डिलेज. डिस्पाइट रिजेक्टिंग एक्टिंग ऑफर्स एंड क्लियरिंग हिज शेड्यूल टू डायरेक्ट द फिल्म, द शूट केप्ट गेटिंग पुश्ड, लीविंग हिम इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सेल्फ डाउट. नाउ इन एन इंटरव्यू विद समडी शी शेयर्ड, "So my film Tufan was released in 2021 and right after that I was set to direct the film called Jeete Zara. It just kept getting delayed and for those 2 years I kept saying no to all other opportunities that came my way. I did that because when you have to direct you and only focus on that. If an acting role came, I told them no, I'm soon going to be directing. It was such a stressful period because I thought I was wasting time and before I knew it 2.5 years had gone by. When you sit with a therapist and you tell these things, you start realizing where all these things are coming from. It happens a lot of time. Hamare saath aisa bahut kuch hota hai jahan pe hame apne aap hi doubt hone lagta hai, but I think it is necessary also to bounce back. Stay tuned.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सियागा तुम्हें लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा। 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है, तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस है। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी ना खेले, उन्हें फिर से जवानी दे दे रब चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले। तुम्हें सुनती होंगी बेस से भरी हुई बीटें बूम बूम, तुम्हें दिखती होंगी फर्स्ट क्लास की सीटें

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास। दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंसल ग्रुप।
1: डू यू डिजायर फॉर कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिक ज्वेलरी डिजाइंस टू फिट एवरी ओकेजन? खन्ना एंड सन्स ज्वेलर्स हैज यू कवर्ड फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स। वी क्राफ्ट द प्योरेस्ट 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डैजलिंग डायमंड्स ज्वेलरी विद टॉप क्वालिटी एंड फिनिश। वी ऑफर बेस्ट वैल्यू इन ज्वेलरी अलॉन्ग विद टॉप क्राफ्टमैनशिप एंड फेयर मेकिंग चार्जेस। गोल्ड बायबैक, इजी 12 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग अवेलेबल। कम सी अस फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स एट खन्ना एंड सन्स ज्वेलर्स इन कैरी नॉर्थ कैरोलिना और कॉल अस एट 9193883838।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

यार, आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित। और आज का शो आज सही में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले सवा साल में मैं आपको अपनी सारी कहानियां सुना चुका हूं। कभी अपनी ज़िंदगी की वो किस्से, कभी बचपन की यादें, कभी वो हंसी मजाक, कभी थोड़ी सी इमोशनल बातें और कभी बस इधर उधर की बातें। लेकिन आज सोचा क्यों ना आज अपनी कहानियां थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और आज हम कुछ और कहानियां सुनते हैं। ऐसी कहानियां जो शायद हमारी नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई हैं। कुछ अतरंग की कहानियां होंगी, ऐसी कि आप कहेंगे भाई ये भी कहीं होता है। कुछ डरावनी कहानियां होंगी, ऐसी कि रात को लाइट बंद करने से पहले आप एक बार रूम के कोने में जरूर देख लेंगे। और कुछ कहानियां जो शायद आपको थोड़ा सा झंझोर कर रख दें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं होती है। कुछ कहानियां हमें डराती हैं, कुछ हमें हंसाती हैं, कुछ हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक हमारे साथ रहती हैं। और फिर होंगी कुछ प्यारी सी कहानियां, छोटी छोटी सिंपल सी, किसी अनजान इंसान की कहानी, किसी माँ बाप और बच्चे के बीच का एक छोटा सा मोमेंट, दो पुराने दोस्तों की मुलाकात, या फिर कोई ऐसी छोटी सी बात जो शायद दुनिया के लिए बहुत ऑर्डिनरी हो लेकिन किसी एक इंसान के लिए पूरी दुनिया हो। और शायद इसी में, इन्हीं कहानियों में खूबसूरती है। हम सब की जिंदगी में कहानियां ही तो हैं। कुछ हम दुनिया को बताते हैं, कुछ सिर्फ अपने करीबी लोगों को, और कुछ कहानियां हम खुद से भी छुपा कर रखते हैं। लेकिन आज हम उन कहानियों की बात करेंगे जो थोड़ी हटके हैं। तो आज कोई फिक्स मूड नहीं है, ना कोई फिक्स थीम है। कभी हम हंसेंगे, कभी थोड़ा डरेंगे, कभी कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया, और कभी शायद कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो जाएंगे। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सफ़र जारी रखिए, घर पे हैं तो चाय का एक कप बना लीजिए, और अगर ऑफिस में बैठे हैं तो बॉस आसपास ही होगा तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानियां बॉस के लिए नहीं है, आज बस हम हैं, आप हैं, और कुछ अजीब, कुछ अनकहीं, कुछ अनोखी, कुछ खौफनाक और कुछ दिल को छू जाने वाली कहानियां। और हाँ, एक बात पहले बता दूं, हर कहानी का एंड जरूरी नहीं कि हैप्पी हो। कभी कभी कहानी का एंड सिर्फ होता है कि हम कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता। और शायद इसी वजह से कहानियां इतनी पावरफुल होती हैं, वो हमें किसी और की जिंदगी में कुछ मिनट के लिए ले जाती हैं। हम किसी और का डर महसूस करते हैं, किसी और की खुशी में खुश होते हैं, किसी और का दर्द समझने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी बिना जाने किसी और से थोड़ा सा कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का इधर उधर की बातें थोड़ा अलग है। आज हम बातें कम, कहानियां ज़्यादा करेंगे। वेल, इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। कुछ कहानियां आपको सरप्राइज करेंगी, कुछ शायद डराएंगी, कुछ आपको अंदर तक हिला देंगी, और कुछ बस एक छोटी सी मुस्कान देकर चली जाएंगी। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, दिल को दिमाग दोनों को खोल लीजिए, और अगर आप थोड़ा सा डरने के लिए रेडी हैं तो लाइट्स भी थोड़ी डिम कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। तो चलिए दोस्तों, सवा साल तक हमने अपनी बहुत कहानी सुना दी है, आप सुनते हैं कुछ और कहानियां, कुछ अतरंगी, कुछ डरावनी, कुछ झंझोर देने वाली है, कुछ बहुत बहुत प्यारी। तो चलिए पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। मैं हूं अर्पित। और आपको अगर भजन में इंटरेस्ट है या आजकल जो भजन क्लबिंग चल रहा है तो भाई आपके तो लकी लक है। अगले सैटरडे को यार मेरा ध्यान भी वहाँ रहता है, तो 5th सितंबर को हुकी एंटरटेनमेंट में रेडियो नायरा होस्ट कर रहा है भजन क्लबिंग जन्माष्टमी के उपलक्ष में। तो जाइएगा जरूर। और अभी टिकट सस्ते हैं अर्ली बर्ड के अंदर $20 के, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते आते हैं, तो आपको तो पता ही है हमें तो पैसे सेव करने चाहिए। सो प्लीज़ टिकट खरीदिए, मस्ट जाइए। शाम को 7 से 11 बजे तक है। इनफैक्ट थोड़ा लेट भी हो सकता है क्योंकि ये ना भजन है, भगवान का नाम लेने में कभी टाइम नहीं देखना चाहिए। तो जाइएगा जरूर, बहुत इन्जॉय करेंगे जो लोग इन्जॉय करते हैं। नाउ तो अब हम बात करते हैं कहानियों की। तो चलिए आज की पहली कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को अचानक आँख खुल जाए, कोई आवाज़ नहीं, कोई सपना नहीं, बस आँख खुल जाती है और पता नहीं क्यों दिल कह रहा होता है कि कुछ ठीक नहीं है। आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक लड़का था रोहन। रोहन एक नए शहर में जॉब के लिए शिफ्ट हुआ। एक छोटा सा क्यूट सा अपार्टमेंट लिया 5th फ्लोर पे। बिल्डिंग अच्छी थी, सिक्योरिटी भी, पड़ोसी भी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जगह। बस एक प्रॉब्लम थी, रोहन की नींद रोज रात को 2:17 पे खुल जाती थी। पहली रात उसने सोचा कुछ इत्तेफाक होगा, दूसरी रात भी 2:17, तीसरी रात सेम टाइम, और हर बार आंख खुलते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती दरवाजे पर। रोहन उठता, मुझे पीप होल होता है उससे देखता, कोई नहीं। एक रात उसने दरवाजा खोल ही दिया, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लाइट हल्की सी फ्लिकल कर रही थी। रोहन ने सोचा शायद मेरा इमेजिनेशन है, लेकिन अगले दिन उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से कैजुअली पूछ लिया, अरे भैया रात को यहाँ कोई डिलीवरी या कोई विजिटर आता है क्या 5th फ्लोर पे? तो गार्ड ने कहा, रात को 2 बजे? नहीं साहब, गेट तो 11 बजे ही लॉक हो जाता है। रोहन हंस दिया, लेकिन उस रात उसने फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। 2:17 हुए, रोहन की आंख खुली। इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला, बस बेड पर बैठकर सुनता रहा। दोबारा से, और फिर एक आवाज बहुत हल्की सी, रोहन। रोहन का खून जम गया। उसका नाम? उसने दरवाजे के पास जाकर फिर से पीप होल से देखा, कोई नहीं था। उसने फोन उठाया और रिकॉर्डिंग चेक करी, आवाज रिकॉर्ड हुई थी, रोहन। अगली सुबह रोहन सीधे अपने मकान मालिक के पास गया, उसने सब बताया। मकान मालिक कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें रूम चेंज कर लेना चाहिए। रोहन ने पूछा, क्यों? तो मकान मालिक ने कहा, इस अपार्टमेंट में पहले भी एक लड़का रहता था, उसका नाम भी रोहन था। रोहन हंस पड़ा, अरे बड़ी फनी। मकान मालिक नहीं हंसा, उसने कहा, 3 साल पहले वो यहीं मर गया था। रोहन चुप, कैसे? मकान मालिक ने कहा, हार्ट अटैक से रात को। तो रोहन ने धीरे से पूछा, कितने बजे? मकान मालिक ने कहा, 2:16। उस रात रोहन ने डिसाइड किया कि वो अपार्टमेंट छोड़ देगा। उसने अपना बैग फटाफट पैक किया, लेकिन जाने से पहले एक बार उसने बेडरूम की वॉल पर लगा पुराना मिरर देख लिया, और मिरर पर स्टीम से कुछ लिखा हुआ था, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? रोहन ने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे को देखा, और तभी इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, बेड के नीचे से आ रही थी। तो भाई आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? कहानी मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। आई नो बहुत ही गलत कर रहा हूँ, बट मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ लेके जाती है। खुद सोचिए या मुझे फोन करके बताइए कि इसके आगे क्या हो सकता है, या मुझे गाली देने का मन कर रहा है तो भी फोन कर सकते हैं। नंबर है 9199998595।
1: Across 400 years, 4 daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join 4Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.

0: Across 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind.
2: Looking for the perfect summer family night out? Join the North Carolina Courage on Wednesday, August 26th at 8 p.m. as they take on Angel City FC. Featuring U.S. Women's National Team star Gisele Thompson, it's professional women's soccer at its best. Non-stop action on the field, plus family-friendly fun and entertainment before and during the game. And with no ticket fees, free parking, and affordable prices, it's the easiest night out you'll plan all summer. Get your tickets now at tickets.nccourage.com. See you August 26th.
3: Triangle, are you ready? For the first time in Raliduram, Radio Naira and Cherished Moments proudly present Bhajan Clubbing, a Krishna Janmashtami special where devotion meets the beat and brings generation together. Bring your family and friends for an unforgettable evening of bhajans, music, dance and celebration featuring AJ the DJ. Plus, enjoy exciting raffles to win and celebrate for a cause. A portion of the proceeds will benefit Radha Krishna Temple. Saturday, September 5th, 7 to 11 p.m. at Hooky Entertainment, Keri. Tickets on Eventbrite. For more details, call 628-258-9983. That's 628-258-9983. Or email info@radionaira.com. Bhajan Clubbing, one rhythm, one heart, one divine celebration.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।
5: कभी कभी ना फोन में ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये कहानी है नेहा की। नेहा एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करती थी। एक दिन ऑफिस से घर आकर उसने फोन चार्जिंग पे लगाया। फोन में एक नोटिफिकेशन था, न्यू वॉइस मैसेज। उसने प्ले किया, सिर्फ 7 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी और एक आदमी की आवाज, बहुत धीमी, नेहा दरवाजा मत खोलना। बस नेहा हैरान, उसने नंबर देखा, अननोन। उसने सोचा स्पैम होगा, डिलीट कर दिया। लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही मैसेज, नेहा दरवाजा मत खोलना। इस बार नेहा थोड़ी नर्वस हो गई, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। और तभी डोरबेल बजी, टिंग टांग। नेहा फ्रीज, एक बार फिर दूसरी बार, टिंग टांग। उसने देखा एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैम पार्सल है, नेहा ने पूछा, किसके नाम से? नेहा, उसने कहा, डोर पे रख दीजिए। डिलीवरी बॉय चला गया। नेहा ने पार्सल उठाया, बॉक्स पर उसका ही नाम था लेकिन सेंडर का नाम नहीं था। अंदर एक पुराना सा फ़ोन था, एक छोटी सी चिट्ठी भी थी और सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस फोन को रात को 11:30 पर अनलॉक करना। नेहा ने सोचा कोई प्रैंक कर रहा है, उसने फ़ोन ड्रॉअर में रख दिया। रात के 11:30 बजे फ़ोन खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक ही वीडियो था। नेहा ने वीडियो प्ले किया। वीडियो में नेहा खुद थी, वही बेडरूम, वही रूम, वही कपड़े, लेकिन वीडियो में नेहा रो रही थी। कैमरे के सामने बैठकर वो कह रही थी, प्लीज़ अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो आज दरवाज़ा मत खोलना। नेहा की सांस रुक गई। वीडियो में नेहा ने क्लॉक की तरफ देखा, 11:34 हो रहे थे। फिर कहा, वो आ गया। वीडियो ख़त्म। नेहा ने तुरंत अपने फ़ोन की क्लॉक देखी, 11:31, सिर्फ 3 मिनट। तभी फिर से नॉक होती है। नेहा पीछे हटती है और एक आवाज़ आती है, नेहा। वही आवाज़ जो वीडियो नोट में थी। नेहा ने दरवाजे के पास जाकर पीप होल से देखा, कोई नहीं था बाहर। फिर फोन पे नोटिफिकेशन आई और एक और वॉइस मैसेज, नेहा अब पीछे मत देखना। नेहा का पूरी बॉडी फ्रीज हो गई क्योंकि उस मोमेंट उसने अपने पीछे किसी की सांस महसूस की। फोन उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली प्ले होने लगी और उस रिकॉर्डिंग में एक आदमी कह रहा था, नेहा मैंने तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर एक पॉज, लेकिन तुम हर बार पीछे मुड़ जाती हो। नेहा ने आंखें बंद कर ली, उसने पीछे नहीं देखा। कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ शांत, दरवाजा नहीं नॉक हुआ। तो अगली सुबह पुलिस को बुलाया गया, उसने फोन करा कि मेरे साथ ये सब हुआ। लेकिन जब पुलिस आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। नेहा रूम में बैठी हुई थी बिल्कुल ठीक, लेकिन उसका फोन फ्लोर पर पड़ा हुआ था और उसमें एक नई रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग सिर्फ 5 सेकंड की थी नेहा की आवाज में, लेकिन नेहा ने वो रिकॉर्डिंग कब बनाई ये उसको भी नहीं पता था। लेकिन उसमें वो कह रही थी, आज मैंने पीछे नहीं देखा लेकिन कल देखूंगी। और उसके बाद वो फोन परमानेंटली डेड हो गया।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: वेलकम बैक. मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें. हम कहानियों का दौर जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता था आपसे. बात वो है कि दीज आर नॉट स्क्रिप्ट्स, दीज आर जस्ट थिंग्स. ओह, ये तो स्क्रिप्ट में रीड ईच वन वंस देन से इन योर ओन वर्ड्स. अरे यार, ये भी स्क्रिप्ट में ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी कहानी. अरे ओके, वेट अ मिनट. ऑलराइट, सो ठीक है, बुझाइए सब. सो यू नो, आपको वो फीलिंग आती है ना जब आप ने फॉर्म भरे हैं UCIS के, H1 के, H4 के, ग्रीन कार्ड के, अपनी फैमिली के, एंड एवरी डे आप जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, आप क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं. वो कितनी अजीब फीलिंग होती है ना यार, कहीं तो आगे बढ़े हमारा केस, लेकिन बढ़ता नहीं है. सो इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कुछ सलाह मशवरा करना है, तो ब्राउन इमिग्रेशन लॉ जो काफ़ी टाइम से RTP में काफ़ी फैमिलीज की हमारी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ उन्हें अप्रोच करिए. उनका नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. सर्च फॉर ब्राउन इमिग्रेशन लॉ एंड जो टेंशन है उसको थोड़ा कम करिए. तो चलिए, अभी तक की दो हॉरर कहानियाँ ठीक है बहुत हो गई थी, अब थोड़ी लाइट करते हैं. कहानी ये है कि एक लड़का है अमित, वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहता था. पापा को स्मार्टफोन चलाना प्रॉपरली आता नहीं था, व्हाट्सएप पर कभी कभी मैसेज करते थे, बेटा क्या कर रहे हो? अमित रिप्लाई करता, भैया बहुत बिजी हूँ पापा, अभी बाद में बात करते हैं. पापा का अगला मैसेज होता, अच्छा ओके बस. एक दिन पापा ने मैसेज किया, बेटा संडे को फ्री हो? अमित ने अपना कैलेंडर देखा, संडे ऑलरेडी प्लान से भरा हुआ था. उसने रिप्लाई किया, पापा नेक्स्ट संडे बात करते हैं. पापा ने बस लिखा ठीक है. अगले हफ्ते संडे को अमित ने खुद कॉल किया, हाँ पापा बोलो. तो पापा बोले, कुछ नहीं बेटा, बस आवाज़ सुननी थी. अमित बोला, पापा भी ना. पापा हंस पड़े, फिर पूछा, खाना खाया? हाँ. ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा. और बाकी सब ठीक है? हाँ. थोड़ी देर साइलेंस रहा. पापा बोलते हैं, अच्छा बेटा चलो रखते हैं, कॉल ख़त्म. अमित काम में लग गया. कुछ महीने बाद अमित घर गया, पापा सोफे पे बैठे थे. अमित ने कहा, पापा अपना फ़ोन दो ज़रा. पापा ने फ़ोन दिया. अमित ने व्हाट्सएप खोला, चैट में पापा के बहुत सारे मैसेज थे. कुछ मैसेजेस में सिर्फ गुड मॉर्निंग बेटा, कुछ में फ़ोटो, कभी गार्डन की, कभी चाय की, कभी बारिश की, कभी बिना मतलब एक फोल्डेड हैंड्स इमोजी की. अमित स्क्रॉल करता गया, उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि पापा मैसेज भेज नहीं रहे थे, पापा बस अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे टुकड़े उसके साथ शेयर कर रहे थे. जैसे वो कह रहे हो, बेटा आज मेरे दिन में ये हुआ, देखो आज बारिश हुई, देखो आज तुम्हारी माँ ने ये बनाया, देखो आज मैं यहाँ बैठा हूँ. अमित ने फ़ोन तुरंत पापा को वापस दिया और फिर बोला, पापा हाँ, आज से जब भी मैसेज करना मैं रिप्लाई करूँगा. पापा हंसकर बोले, अरे काम भी तो करता है ना तू. अमित ने कहा, काम तो चलता रहेगा. पापा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए. दोस्तों, पेरेंट्स अक्सर हमसे बहुत कम मांगते हैं, उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें हर वीकेंड विजिट नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ एक रिप्लाई चाहिए, एक फोन कॉल, एक हाँ पापा बोलो, एक माँ क्या बनाया आज खाने में, और हम सोचते रहते हैं बाद में कर लूँगा. लेकिन पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है, उनके पास भी एक बाद में होता है, बस हमें पता नहीं होता कि वो कितना लंबा है. तो अगर आज फोन में किसी अपने का अनरीड मैसेज पड़ा हो, तो शायद आज अभी इसी वक्त रिप्लाई कर दिए. हो सकता है उसके लिए वो मैसेज सिर्फ एक मैसेज हो, लेकिन उनके दिल में वो एक पूरा कन्वर्सेशन हो.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
2: दोस्तों, अब ये कहानी एक छोटी सी अजीब सी आदत से शुरू होती है। मीरा हर फ्राइडे शाम अपने अपार्टमेंट के बाहर एक फूल रख देती थी, बस एक फूल, कभी गुलाब, कभी मोगरा, कभी छोटा सा सनफ्लावर।

ना कोई नोट ना नाम, बस एक फूल। पहले पहले उसकी नेबर मिसेस शर्मा ने नोटिस किया। उन्होंने सोचा शायद मीरा को फ्लावर्स पसंद है। लेकिन एक दिन मिसेस शर्मा ने देखा कि मीरा फूल रखकर चली गई और एग्जैक्टली 5 मिनट बाद एक छोटी सी बच्ची कॉरिडोर में आई। उसने फूल उठाया, उसे अपने बालों में लगाया और चुपचाप चली गई। मिसेस शर्मा को उत्सुकता हुई। अगला फ्राइडे वो जान बूझकर कॉरिडोर में बैठी रही। मीरा आई, फूल रखा, चली गई। 5 मिनट बाद वही बच्ची आई। मिसेस शर्मा ने पूछा, बेटा ये फूल तुम्हारे लिए है क्या? बच्ची मुस्कुराई, हाँ। कौन देता है? बच्ची ने कहा, पता नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता तुम्हारे लिए? बच्ची ने, क्योंकि वो फ्राइडे को हमेशा मेरे लिए फूल छोड़ते हैं। मिसेस शर्मा ने मीरा से पूछा। मीरा बस मुस्कुरा दी। बस एक छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी क्या थी वो नहीं बताई। कुछ हफ्तों बाद बच्ची फूल लेने नहीं आई। एक फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे मीरा फिर भी फूल रखती रही। मिसेस शर्मा ने पूछा, अब क्यों? मीरा ने कहा, शायद वो कभी वापस आए। एक महीना गुजर गया। फिर एक दिन बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि बच्ची की माँ का ट्रांसफर हो गया था, फैमिली दूसरे शहर चली गई। मिसेस शर्मा ने सोचा तो अब फूल बंद हो जाएगा। लेकिन अगले फ्राइडे मीरा ने फिर एक फूल रखा और उसके साथ एक छोटा सा नोट, जहां भी हो खुश रहना। मिसेस शर्मा ने सोचा, तुम्हें लगता है कि वो कभी ये देखेगी? मीरा बोली, पता नहीं। तो फिर? मीरा मुस्कुराई, हर अच्छी चीज का जवाब मिलना जरूरी थोड़ी है। 3 महीने बाद एक फ्राइडे को बिल्डिंग की एंट्रेंस पे एक कुरियर आया, छोटा सा पार्सल, मीरा का नाम। अंदर एक ड्राइंग थी, एक छोटी बच्ची ने बनाई थी, एक घर, एक सूरज और एक लड़की के हाथ में फूल। नीचे लिखा था, मुझे अब भी फ्राइडे पसंद है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी छोटी सी काइंडनेस का क्या फ़ायदा, एक स्माइल, एक मैसेज, एक कप चाय, एक फूल। लेकिन हमें कभी पता नहीं होता कि सामने वाले के लिए वो चीज़, छोटी सी चीज़, कितनी बड़ी हो सकती है। और शायद अच्छाई की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसका रिजल्ट देखना जरूरी नहीं होता, बस करते रहना होता है।

ऑलराइट, चलिए अगली कहानी सुनते हैं। रात के 10:55 बज रहे थे। रवि बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। आखिरी बस 11 बजे आती है। उस दिन बारिश भी बहुत तेज थी। 11:02 हो गए, बस नहीं आई। 11:05 फिर भी नहीं आई। रवि ने सोचा यार आज तो बुरे फंस गए। तभी दूर से हेडलाइट दिखी, एक पुरानी बस। वो रुक गई आके। ड्राइवर ने विंडो खोली, चले। रवि तुरंत बस में चढ़ गया। अंदर सिर्फ एक मुसाफिर था, एक बुजुर्ग आदमी। रवि ने टिकट ली और विंडो के पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि बस उसके नॉर्मल रूट पे नहीं जा रही थी। रवि ने ड्राइवर से पूछा, भैया ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने मिरर में देखा, जहाँ तुम्हें जाना है, लेकिन ये रूट तो नहीं है। ड्राइवर मुस्कुराया, पता है। रवि को थोड़ा डर लगा, उसने फोन निकाला लेकिन सिग्नल ही नहीं था। वो बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। पहली बार हो? रवि ने पूछा। क्या, इस बस में पहली बार चढ़े हो? रवि ने कहा हाँ। बुजुर्ग मुस्कुराया, चिंता मत करो। बस एक छोटी सी गली में रुकी, वहां एक ओल्ड एज होम था। ड्राइवर ने रवि से कहा, यहां उतरो। रवि हैरान, मैं तो घर जा रहा हूं। ड्राइवर बोला, पता है। तो फिर? बस 5 मिनट। रवि नीचे उतर गया। ओल्ड एज होम के बाहर एक बुजुर्ग औरत थी जो व्हीलचेयर पे बैठी थी। वो बारिश में गेट की तरफ देख रही थी। रवि ने पूछा, मैडम आप किसी का वेट कर रही हैं? तो वो बोलती है, मेरा बेटा आने वाला है। कितने बजे? 10 बजे। रवि ने फोन देखा तो 11:30 हो रहे थे, शायद ट्रैफिक में होंगे। तो वो मुस्कुराई, वो हर बार लेट होता है। रवि ने उनके पास बैठकर बातें शुरू कर दी। 5 मिनट, फिर 10, फिर 20। उन्होंने अपने बेटे की पुरानी बचपन की कहानियां सुनाई। वो कैसे स्कूल से भागकर आम तोड़ता था, कैसे एग्जाम के दिन बुखार होने का बहाना करता था। रवि हंसने लगा। तभी एक कार गेट पे बाहर आकर रुकी। एक आदमी भागता हुआ अंदर आया, माँ। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा उनके पास घुटने पर बैठ गया। सॉरी माँ, बहुत लेट हो गया। माँ ने कहा, तू आ गया ना, बस इतना ही काफी है। रवि चुपचाप खड़ा हो गया, वापस बाहर आया। बस अभी भी खड़ी थी। वो अंदर चढ़ा। ड्राइवर ने कहा, अब घर? रवि बोला हाँ। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था ना, वो मुस्कुराया। उसने पूछा, समझ गए? तो रवि ने पूछा, क्या? तो वो बोले कि हर किसी को घर पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन कभी कभी रास्ते में किसी और को घर पहुंचना ज्यादा जरूरी होता है। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उसके अपार्टमेंट के सामने गाड़ी आके रुक गई। वह नीचे उतरा, पलट कर देखा, बस में तो कोई था ही नहीं, ना ड्राइवर ना बुजुर्ग, बस एक पुरानी खाली बस। अगली सुबह रवि ने बस डिपो में पूछा कि कल रात 11 बजे वाली बस कौन चलाता है? तो क्लर्क ने कहा, भाई वो तो 2 साल से बंद हुई है, वहां तो कोई नहीं चला रहा आजकल। रवि हंस दिया, उसने कुछ नहीं कहा, बस घर जाकर अपनी माँ को फोन किया। माँ फ्री हो? हाँ बेटा, बस ऐसे ही बात करनी थी। और शायद उस रात रवि को समझ में आ गया था कि कभी कभी जिंदगी हमें मुकाम से थोड़ा दूर ले जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि हम किसी और के लिए रास्ता बन सके। बाय द वे, अब जो अगला गाना मैं बचा रहा हूँ यार, वो मैं काफी एक हफ्ते से लूप में सुन रहा हूँ। ये बहुत अमेजिंग सॉन्ग है। मुझे लगता है कि अमेजिंग बीट्स हैं, अमेजिंग फील है, अमेजिंग वाइब है और लिरिक्स अमेजिंग है। तो अगर आप सुन रहे हैं, गाड़ी में हैं, जहाँ पे भी हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, बहुत भयानक भी नहीं, बट हाँ इन्जॉय करिएगा ये गाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो बताइएगा। नंबर है 9199998595।

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: At Autopart Honda, we don't need to advertise the Honda Accord's reliability or the Civic sportiness. We don't need to make loud commercials about promises we can't keep. You already know we make the process easier, year after year, time and time again. Plus, who doesn't love free oil changes, loaners, and more with every new car purchase? We're about delivering on that Autopart for Life promise. It's why people keep coming back. Check us out at AutopartHonda.com today. It's easier here.
2: Save now during the Honda Summer Event. Visit AutopartHonda.com for details.
3: Triangle, are you ready? For the first time in Raleigh-Durham, Radio Naira and Cherished Moments proudly present Bhajan Clubbing, a Krishna Janmashtami special where devotion meets the beat and brings generation together. Bring your family and friends for an unforgettable evening of bhajans, music, dance and celebration featuring AJ the DJ. Plus, enjoy exciting raffles to win and celebrate for a cause. A portion of the proceeds will benefit Radha Krishna Temple. Saturday, September 5th, 7 to 11 p.m. at Hooky Entertainment, Keri. Tickets on Eventbrite. For more details, call 628-258-9983. That's 628-258-9983 or email info@radionaira.com. Bhajan Clubbing, one rhythm, one heart, one divine celebration.
4: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
3: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
4: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
4: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
4: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
5: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल. सुनते रहिए रेडियो नारा.
6: और राइट, जो भी सुन रहे थे वो सोच रहे होंगे कि अभी तक हम 2025 को वेलकम कर रहे हैं. वेल, देखिए, हम उन लोगों में से हैं जो अगर गलतियां करते हैं तो मान लेते हैं. हाँ, आई नो हमारे इसके अंदर वो क्लिप पड़ी हुई है, तो चलने दीजिए. इसी बहाने बातें हो जाती हैं यार. लोग हमें सोचते हैं कि ऐसे लोग हैं रेडियो पे अभी तक 2025 की पुरानी क्लिप चला रहे हैं. दैट्स ओके. वेल, मैंने कहानी सुनाने की कोशिश करी बट मुझे खुद नहीं जम रहा था, तो लेट इट बी. मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ. या कॉलेज में, ठीक है, मेरा तो बहुत बकवास किया था. आई एम श्योर काफ़ी धुरंधर लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं, जिनके बहुत ही यू नो अमेजिंग अमेजिंग कहानियाँ हैं जो छुपा के रख रहे हैं, हमसे शेयर नहीं कर रहे हैं. बट एनी वेज, वो याद है सीन थ्री इडियट्स वाला, जिसके अंदर वो रेंचो और बाकी जो जाते हैं, घुस जाते हैं शादियों के अंदर रैंडमली. डूड, हमने भी करा है. आई एम श्योर काफ़ी लड़के होंगे, स्पेशली जो हॉस्टल में रहते हैं ना, उन्होंने तो करा ही करा होगा. और ये कब करा है, जब रहा हुआ आई नहीं मूवी. तो वो चीज़ जो है ना वो फेक नहीं है, वो चीज़ होती है, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. तो हमारा जो कॉलेज था, ठीक है, मेरठ के अंदर, एंड इट वाज लाइक बाहर जंगलों के, जंगल तो नहीं, खेत हैं, जंगल तो है ही नहीं मेरठ के अंदर, अब खेतों में कहीं पे हमारा कॉलेज हो. याद है 90s के अंदर हर जगह कुकर मत्तों की तरह प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए थे, तो वो हमारा कॉलेज था. तो ऑलमोस्ट 2 साल तक बस वो कुछ नहीं है, हाईवे है, हाईवे के बगल में कॉलेज है, कुछ नहीं कर रहे हैं. तीसरे थर्ड ईयर में कॉलेज के सामने एक वो बना दिया, काइंड ऑफ फार्म हाउस, जो शादियों के लिए वो देने लगे रेंट पे. आई वाज लाइक डूड, आर यू सीरियस, क्या सोच के, मतलब सारा कॉलेज का क्राउड वहां पे पहुंचेगा, तुम क्या सोच के कर रहे हो. बट एनीवेज, तो यार मैं तो बहुत सीधा साधा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था. और लाइक यू नो, तौबा तौबा, ये तो गलत है, मैं उस कैटेगरी का था. लेकिन मैंने सुनना शुरू करा कि यार मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, जूनियर सीनियर हर कोई जाता है जब भी शादी होती है। मैं कहा बॉस अम्मी जाएंगे, तो हमने वेट करना शुरू करा कि अगली शादी कब है। तो पता चला भैया शाम को शादी हो रही है, दिख गया प्रिपरेशन एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, हमने अपना मस्त स्वेटर निकाला एंड ऑल, और मैंने पकड़ा वो बंदा जो अभी तक गया ही नहीं था। तो मैं किसी एक्सपीरियंस होल्डर को भी लेके नहीं गया, जो यू नो कि जो पहली बार जा चुका है, घुस चुका है, जो मुझे हेल्प कर रही है ना, लाइक हम चले गए लेके अपने दूसरे दोस्त को जो खुद पहली बार जा रहा है। और हमारी डर भी लग रहा है यार कैसे जाएंगे। तो हमने लिया पहले टापा कि सामने कॉलेज के सामने से नहीं जाएंगे, तो उन्हें दिख जाएगा कॉलेज से ही आ रहे हैं। तो पिछले की बाउंड्री हमने क्रॉस करी घूम के खेतों में से दूसरी तरफ से, प्रिटेंड करते हुए कि हम तो कॉलेज की उल्टी डायरेक्शन से आ रहे हैं, और हमारे सामने कोई फैमिली जा रही थी, कोई अंकल होंगे फैमिली के साथ। तो हम ऐसे प्रिटेंड करके चलने लग गए कि हाँ उन्हीं के साथ हैं, हम बातें करते हैं, हाँ ये वो करते, अंदर घुस गए। ठीक है, इतनी बड़ी शादी नहीं थी, छोटी सी थी, या ये समझ लो कि शायद आई नहीं थे, आई डोंट नो, इतनी बड़ी शादी नहीं थी। एनीवेज, तो हमारा तो पहला फोकस था खाना खाएं, खाना खाएं, खाना देखा, खाना लग रहा है, हम खाना ले लग गए लेने। खाना हमने प्लेट उठाई तो देखा कि अरे तू भी यहाँ पे, तो और लड़के थे, फिर आगे बढ़े तो अरे तू भी यहाँ पे, तो अरे और दूसरा, लाइक सीनियर बैच भी था, थोड़ा जूनियर बैच भी था। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो देखा अरे तू यहाँ पे। तो जो हमारा चौराहा था, मतलब कॉलेज के पास में वहां पे ढाबे थे, तो ढाबे पे जो एक भैया थे जो हमें खाना बना के देते थे, वो भी वहां पे आए हुए थे खाना खाने। तो बेसिकली शादी में चार पार्टियां चल रही थी, एक लड़के वाले, एक लड़की वाले, एक कॉलेज वाले, और जो वहां पे काम करते हैं ना आसपास हॉस्टल के, जिनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ढाबे चल रहे हैं, वो वाले। अरे यार दैट वाज फनी, अरे हे भगवान कितना नुकसान हो रहा है इन लोगों का। ऑन द टॉप ऑफ दैट मेरा जो दोस्त था वो ज्यादा टैश महंगा, उसने चल जाके डांस करके आते हैं, फोटो खिंचा के आएंगे। तो हम डांस करने तो चले गए, जब फोटो खिंचाने की बारी आई तो हमने कहा ये ज्यादा हो जाएगा डूड, इतना भी हम रिस्क नहीं ले सकते। वेल हमें कहानी के अंदर सुना सकता था, बट थोड़ी क्रेडिबल कहानी भी होनी चाहिए ना कि हमने फोटो खिंचवाई, उतनी हिम्मत नहीं हुई थी, फोटो वोटो हमने नहीं खिंचवाई। लेकिन हाँ वो मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था। फिर मैंने कहा बॉस रिस्क ज्यादा है, खाना भी इतना अच्छा नहीं था, तो ये काम नहीं करते। वेल अगर आपने से भी ऐसा कुछ करा हुआ तो बताइए, नंबर है 9199998595।

अगर आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, हिंदी सॉन्ग से तमिल सॉन्ग कैसे हो गया या तेलुगु सॉन्ग कैसे, या ये बड़ा अच्छे सॉन्ग्स हैं, दो गाने हैं, एक मूवी है सन ऑफ कृष्णन, देखिएगा जरूर, बड़ी अच्छी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, इट्स ऑटोबायोग्राफी है टाइप का ऑफ मूवी, लेकिन ये गाने जो है ना ये अमेजिंग है, ये ट्यून है, जस्ट फील दैट थिंग, तो जरूर सुनिए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

वाओ, बैकग्राउंड के अंदर क्या आवाज आ जाती है ना यार, मैं जैसे ही माइक टर्न ऑफ करता हूँ। एनीवेज, तो अभी इस वीकेंड पे मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के बातें कर रहा था, देन वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट साइकिल्स कि यार अपने टाइम पे साइकिल किस किस टाइप की होती थी, क्या क्या करते थे और क्या एक्साइटमेंट होता था। तो आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा कैची, कैची मालूम है जो बड़ी साइकिल होती है ना, स्पेशली वो जो ब्लैक वाली होती है, जो आपके जो वर्किंग पीपल होते थे ब्लू कॉलर वाले, वो जो चलाते थे, ब्लैक कलर की गाड़ी होती थी, बिल्कुल स्ट्रेट आपको चलानी होती थी वो साइकिल। वो तो बड़ी होती है और बीच में डंडा होता है, तो बच्चे कैसे चढ़ सकते, चढ़ ही नहीं सकते उसके अंदर। तो वो एक पैर साइड से निकाल के दूसरी तरफ से बेसिकली बैलेंस करके कैसे चलाते थे, जो जिसको नहीं आती उसको लगे क्या स्किल है या क्या बैलेंस कर रहा है। बट यार बच्चे कर लेते हैं यार, हम बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चों का फोकस बहुत सही होता है, उनके दिमाग में ना 1000 चीज़ें चलनी हुई होती हैं, तो वो हर चीज़ फटाक से सीख लेते हैं, फटाक से कर लेते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है हम बड़े होते हैं हम डम्ब हो जाते हैं, बच्चे होते हैं हम सही होते हैं। तो हम बच्चों को तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो हमसे ज़्यादा सुलझे हुए हैं और ज़्यादा स्किल जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। तो कैची क्या चलाते थे यार, क्या मस्त चलती थी ना, चला रहे हैं वो, उसके अंदर फील आती थी कि यार हमने भी बड़ी साइकिल चलानी सीख ली। अरे वो याद है, एक बीच में बाकी नॉर्मल साइकिल्स तो आती रहती थी, लेकिन पहली एक साइकिल आई थी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद फास्ट ट्रैक थी जिन्हें किया थी। उसके आगे जो आपके जो हैंडल है उसमें ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स के आगे कवर था ब्लैक कलर के, उनमें छेद होते थे, क्या फैंसी लगता था यार, कि मतलब कुछ तो है ये साइकिल, कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी, कुछ नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक के दो उन्होंने हैंडल कवर लगा दिए और उसके एक्स्ट्रा पैसे लेते थे, और उसके लिए मुझे, मैं दीवाना था उस साइकिल के लिए। और मोटे टायर होते थे उसके, एक वो कंसेप्ट चला था कि मोटे टायर, अगर पंचर हो गई तो भैया तुम्हारे तोते उड़ जाते थे उसको खींचने में, मोटे टायर वाली साइकिल को। लेकिन क्या सही लगता था ना, मोटे टायर है और आदमी चला रहा है, क्या गजब होता था। फिर उसी के अंदर, हाँ उसी साइकिल में तो फर्स्ट टाइम गियर आए थे, आई थिंक 6 गियर थे उसके अंदर, और फिर तो धीरे धीरे करते 6 से 8 8 से ज़्यादा करते करते, मेरा दोस्त था उसने ली शायद 12 16 गियर वाली साइकिल, या 24 थी मुझे नहीं पता, अतरंगी नंबर थे उसके अंदर गियर के नाम पे। मैं भाई क्या करेगा इतने गियर का, पहाड़ों पर चढ़ने वाला क्या करने वाला है इतने गियर, यहाँ स्कूटर के अंदर 5 3 गियर होते थे, उसके अंदर वो गाड़ी बैठ जाती थी, तेरा 24 गियर है, क्या करने वाला है इस चीज़ का। और बड़ी महंगी बाइक ली थी उस टाइम पे 90s में, लाइक लेट 90s के अंदर 5000 की यानी कितनी बाइक थी, क्या सही फैंस ना। तो मैंने कभी ये सब ना अच्छी साइकिलें चलाई नहीं थी, क्योंकि मुझे जो साइकिल थी मेरी, तो जो भी मेरे हाथ में आता था मैं तबाही मचाता था। तो जब दीदी चली गई अपने कॉलेज के अंदर, उसकी साइकिल मुझे मिल गई जो बहुत मस्त थी, नॉट लेडी बर्ड लेकिन उसी की कंटेम्प्रेरी बाइक थी। जैसे ही मुझे मिली, एक महीने के अंदर उसका तिया पाचा कर दिया, टायर बाहर निकल गए, पंचर हो गया, ब्रेक सारे झूल गए, सीट जो थी वो कट गई, उसके अंदर झेलने लग गई, स्टैंड तो था ही नहीं अब उसके अंदर, और कैरियर भी चू चू चू बोलता था। तो ऐसी तैसी कर दी मैंने उस बाइक की, पैर से मैं साइकिल चला के रोकता था। तो जब मेरे दोस्तों, कुछ 12th क्लास के अंदर किसी मेरे दोस्त ने मोटी टायर वाली बाइक खरीदी, मैं कहा मैं भी चलाऊंगा स्कूल में, तो मैं लेके गया और तेजी से चला रहा हूँ, बहुत तेजी से, ठीक है। अब क्योंकि मेरी साइकिल के अंदर तो ब्रेक का कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो पैर से रोकनी होती है, मैं तो दोनों दबाता हूँ, पैर से रोकता था अपनी बाइक, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, मैं भूल गया इंस्टिंक्टिवली कि पीछे वाला ब्रेक कौन सा है, आगे वाला ब्रेक कौन सा है। तो मैंने ब्रेक दबाया, भाई शुक्र मानो मैंने पीछे वाला ब्रेक गलती से दबा दिया, गलती से क्या अच्छाई से, जो भी है मेरा पीछे वाला ब्रेक दबाया और जो गाड़ी ने स्किड मारा, मैं बहुत खुश हुआ कि क्या स्किड है फिल्मों वाला। लेकिन तुरंत ही मुझे एक अल्टरनेटिव स्टोरी सुनाई दी, अगर गलती से मैंने आगे वाला ब्रेक दबा दिया होता तो ये तो मैं उलट के गिरता, और पीछे सारे बच्चे जो थे जूनियर्स और टीचर सब देख के हंस रहे होते मेरे पे। पर क्या, लेकिन सही था यार, अच्छा हुआ उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर हुआ भी होता तो मैं उसे किसी तरह परोस परास के कहानी बना के सुना ही देता आपको। अपनी कहानियां भी सुनाइए, अगर मरे तो नंबर है 9199998595।

0: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: तो दोस्तों लगता है जैसे अब आज की कहानियों का सफर धीरे धीरे अपने आखिरी मोड़ पर आ गया है। आज हमने कितनी अजीब अजीब जगहों पर सफर किया, कभी डर के साथ, कभी सस्पेंस के साथ, कभी कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर किया, और कभी किसी छोटी सी बात ने बस दिल को हल्का सा छू लिया। कुछ कहानियों में हम डरे, कुछ में हमने सोचा अगर मैं होता तो क्या करता, और कुछ कहानियों के बाद शायद हमने आसपास के लोगों को थोड़ा अलग नजर से देखा। शायद घर में रखी वो खाली कप की चाय, शायद माँ का बार बार पूछना खाना खा लिया, शायद पापा का वो रैंडम व्हाट्सएप मैसेज, या फिर किसी दोस्त का बिना किसी रीजन के फोन करना। आज की कहानियों ने शायद एक छोटी सी बात याद दिला दी, हमारी जिंदगी भी एक कहानी होती है, और अजीब बात यह है कि हम सब अपनी कहानी के हीरो होते हैं। दूसरों की कहानियों के सिर्फ एक छोटे से सीन में आते हैं। किसी के लिए हम दोस्त हैं, किसी के लिए बेटा, किसी के लिए माँ बाप, किसी के लिए पड़ोसी, किसी के लिए वो आदमी जो रोज लिफ्ट में मिलता है, और कभी कभी हम किसी अनजान इंसान की कहानी में सिर्फ एक छोटा सा मोमेंट होते हैं। एक मुस्कुराहट, एक शुक्रिया, एक डोर होल्ड कर देना और एक बार पूछ लेना सब ठीक है, और हमें पता भी नहीं होता कि शायद उस इंसान को उस वक्त एक चीज चाहिए थी। इसीलिए शायद जिंदगी को सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट से मेजर नहीं करना चाहिए। कितना पैसा कमाया, कितना घर बनाया, कितनी गाड़ियां खरीदी, कितने अवार्ड्स मिले, ये सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी एक और भी लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोगों को हमने जेन्युइनली हंसाया, कितने लोगों को हमने फील कराया कि हाँ कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, कितनी बार हमने किसी को बिना बात फोन करके देखा, कितनी बार किसी अपने को कहा आज काम छोड़ो यार, बताओ तुम्हारा दिन कैसा था, और कितनी बार हमने किस चीज को पल नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों कल एक बहुत अजीब वर्ड है। कल हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, कल फोन करेंगे, कल मिलेंगे, कल सॉरी बोलेंगे, कल टाइम निकालेंगे, कल वो ट्रिप करेंगे, कल वो सपना परस्यू करेंगे कभी, लेकिन जिंदगी कभी कभी कल को आने ही नहीं देती। इसलिए अगर आज कोई आपको याद करता है तो फ़ोन कर लीजिए, अगर किसी से बात नहीं हुई है तो मैसेज कर दीजिए, अगर किसी से नाराज़ है तो शायद एक बार बात करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई आपके पास बैठा है तो कुछ देर के लिए फ़ोन साइड में रख दीजिए, क्योंकि यादें इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह 24 घंटे बाद डिसअपीयर नहीं होती हैं, कुछ यादें पूरी ज़िंदगी साथ रहती हैं। और हाँ, आज हमने कुछ डरावनी कहानियाँ भी सुनी, तो अगर आज रात लाइट बंद करने के बाद आपको लगे कि कबर्ड के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, और अगर रात के 2 बजे डोर बेल जाए तो कहानियाँ याद रखना, लेकिन दरवाज़ा मत खोलना, क्या पता कोई डिलीवरी वाला हो या फिर कोई पुरानी सीक्वल लेकर आ गई हो कोई। लेकिन जो पार्ट आज का शो मेरे लिए भी बहुत थोड़ा अलग था, क्योंकि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन आज हमने दोनों ही करी हैं, दूसरों की कहानियाँ सुनी और एंड के अंदर मैंने अपनी कहानी भी सुनाई। और शायद कहानियों का सबसे खूबसूरत बात यही होता है कि हम थोड़ी देर के लिए, अरे छोड़ो यार बहुत बड़ा है, ठीक है गाइस मैं निकलता हूँ, बहुत मुझे भूख लग रही है, आप लोग गाने सुनिए, मिलेंगे अगले हफ्ते, शायद मैं कुछ अच्छा बोलूँ, बाय बाय।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने गाना, और ये गाना वाकई में था इस शाम की वाइब सेट करने के लिए काफी, ऐसा मुझे लग रहा है। वेल, काफी शब्द के बाद मुझे याद आया कि कॉफी चाय का मौसम हो रहा है, और ये प्यार भरी शाम में कड़क कॉफी या चाय मिल जाए तो शाम ही बन जाए, ऐसा मुझे लगता है। एंड आज नॉर्थ कैरोलिना के हमारे ट्राइंगल एरिया यानी रैली दरम और RTP से कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें सामने आ रही है जो सीधे हमारे कम्युनिटी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अचानक पारंपरिक बैकपैक्स, मतलब स्कूल बैग्स जो है, पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब बच्चों को सिर्फ बाइंडर बैग्स यानी छोटे सिंच सैक्स लेके जाने की अनुमति दी गई है। बहुत अच्छा किया है यार, कितना बोझा रहता है वो भी बचपन से।

हेलो हाय कसका है निर्वाणा नाइट साहब सुन रहे हैं। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। अगली खबर जो है वो आ रही है ट्रायंगल क्षेत्र में आरटीपी 3.0 प्रोजेक्ट को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। ऐतिहासिक बदलाव के तहत अब धरम और वेक काउंटी ने मंजूरी दी है, यस, एंड आरटीपी के कॉरपोरेट कैंपस वाले इलाकों में अब घर, नए रेस्टोरेंट्स और रिटेल दुकानें भी खोली जा सकेगी। इसके तहत लगभग 500 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी इलाके विकसित किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ लाइव वर्क एंड प्ले वाला एक शानदार टाउनशिप वाला वाइब मिलेगा। क्या ख्याल है आपका, फटाफट मेरे साथ शेयर कीजिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा। ये अगला गाना सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

नाइट्स मतलब 3.0 जो होने वाला है वो देखने लायक होगा. मतलब काम भी करो, एंजॉय भी करो. काम और एंजॉयमेंट का संगम जिस एरिया में मिलता है वहाँ बस हैप्पीनेस निखर के आता है, ऐसा मुझे लगता है. नहीं तो पहले होता था कि बस वर्क प्लेस है यार. वर्क प्लेस अगर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए तो मज़ा ही कुछ और है. कैसे है आप लोग एंड कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? आप सुन रहे हैं रेडियो नारापुर निर्वाणा नाइट्स. निर्वाणा नाइट्स में मेरे जो प्यारे लिसनर्स है यार, क्या कहूँ मैं आपको, इतनी कूल तरीके के लिसनर्स जो है ना, मैंने रेडियो शो में कभी देखे नहीं है. एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा के साथ. एंड सुनाने अभी जा रहा हूँ अगला गाना. ये अगला गाना जो है ना, आपका मूड अगर ख़राब भी होगा तो बदल देगा अच्छे मूड में, ट्रस्ट मी. सो लेट्स एंजॉय.

एंजॉय किया आपने ये गाना। गाना क्या ही था। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कल यानी गुरुवार की देर रात 27-28 अगस्त को एक शानदार आंशिक दैट इज पार्शियल लूनार ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। आधी रात के ठीक बाद आसमान में चांद का करीब करीब 96% हिस्सा धरती की छाया में छिप जाएगा और ये गहरा लाल दैट इज ब्लड मून दिखाई देगा। जो इसे देखेगा ना मतलब ये नज़ारा देखने लायक होगा। भूलिएगा मत ग्रहण को देखने को एंड सेफ्टी तो लेनी है यार जब भी ग्रहण आता है तो। एक जो सेफ्टी गॉगल्स है वॉच एवर जो गैजेट्स रहते हैं उनके साथ सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। खुली आंख से आप ये ग्रहण को देख सकते हैं लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं अगला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर पक्का देसी पक्का लोकल।

आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे रेडियो नारा पर निर्भर नाइट्स एंड कैसे आप सब लोग, आप लोग अगर खुश रहते हैं ना तो मानो कि खुशी अपने आप मेरे अंदर आ जाती है। खुश रहा करो यार, क्योंकि हंसने की एंड खुश रहने की कोई कीमत नहीं होती है। मैं यही कह रहा था कि यू नो 90s के टाइम में यार जो कमिट करने के साधन होते थे, स्पेशली स्कूल के टाइम में हम बाइसिकल पे जाया करते थे एंड वो बैग पीछे लटकी रहती थी। स्कूल अभी चालू हो चुके हैं ना तो याद आती है 90s के किड जो है वो रिलेट कर पाएंगे। देन बोर्ड बनाते थे बारिश के टाइम में, विंटर के टाइम में वो स्वेटर पहन के स्कूल जाना अलग अलग कलर के डिजाइन के साथ, वो भी अपना अपना एक मजा था। तो यार इट्स लाइक लाइफ इज गुड, बस एंजॉय करते आना चाहिए, मतलब पास्ट में ना रहना है एंड फ्यूचर का ज्यादा सोचना नहीं है। प्रेजेंट में जो चल रहा है वो मोमेंट को एंजॉय करो यार, मजा ही आता है, मजा ही मजा आता है। एंजॉय करते अगला ये गाना जो कि प्ले करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे लिसनर्स के लिए।

CMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.